किया कि हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। शिकस्ता कश्ती है तेज़ धार,

तेरी मोहब्बत में अब जियूं मैं, इसी में हो इंतकाल मेरा। ये आखिरी दिन है जिंदगी के, दुरुस्त कर दे माल मेरा।

आपके साथ सिद्दीक और फारूक हैं, वो है जन्नत जहां है कयाम आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे क्या हो बयाज़ मते आपकी,

वो कलाम उस कलेने गए तूर पर, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया, इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया।

तेरी बरकत से ऐसी ये दुल मुरसली, तेरी बरकत से ऐसी ये दुल मुरसली, सुबह रोशन हुई कैफ़े शाम आ गया, जब जुबां पर मुहम्मद का सेठ, जब जुबां पर